0: गेम्स एंड बहुत सारी चीज़ें, उसमें लजीज खाना खाना ना भूलिएगा। तो आपका इंतज़ार ये कर रहा है लोकल शॉपर्स के लिए। आज के लिए तो ये काफ़ी बेहतरीन जगह है, मतलब यहाँ पे लगा है खुशियों का मेला, आप ये कह सकते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो नाइन अपन निर्माता नाइट्स एंड एंजॉय करते हैं अगला गई गाना। कैसी चल रही है आपकी आज की शाम? सुनते रहिए रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।
1: हरमीत, तुझे देख के पता है क्या लगता था? कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा। कितना पोटेंशियल है तुझ में, क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू?

0: बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

रेडियो नायरा 101 नाइट्स एंड डरम के खाने पीने के शौकीनों के लिए बड़ी खबर लेके आ रहा हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 101 नाइट्स एंड फूड लवर्स के लिए। डरम में अमेरिकन टोबैको कैंपस से एक मुंह में पानी ला देने वाली खबर है। लगभग 2 साल के लंबे इंतजार के बाद फुल स्टीम ब्रेवरी ने अपना बेहद खूबसूरत जो है प्लेस, वो नई लोकेशन खोल दी है। यहाँ एक नया शानदार टैप रूम, उसके बाद जो रहेगा रेस्टोरेंट और नया जो फूड का मेन्यू शुरू गया है वो काफ़ी अलग लेवल का है एंड काफ़ी यूनिक है, जो वीकेंड में एंजॉय करने के लिए तो बेहतरीन जगह बताई जा रही है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, एंजॉय तो करना चाहिए, एंजॉय करना सबका हक है और वो करना ही चाहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स।

अपने एंजॉय किया है गाना, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। जी हाँ, गाड़ी का नाम सुनते ही गाड़ियों का नया नियम नॉर्थ कैरोलिना एनसी के लिए लागू कर दिया है। तो क्या है गाड़ियों का नया नियम, एक बेहद काम की जानकारी। नॉर्थ कैरोलिना में DMV दैट इज डिवीजन ऑफ मोटर व्हीकल का नया नियम लागू हो गया है। अब आपकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए लाइसेंस प्लेट पर चिपकाने वाले कागजी स्टिकर नहीं मिलेंगे, बल्कि ये पूरा प्रोसेस डिजिटल और हाईटेक हो चुका है। तो इस नए बदलाव को नोट कर रख लीजिए, आपके लिए काफ़ी काम में आ सकता है। तो इन शॉर्ट, नॉर्थ कैरोलिना का नया नियम गाड़ियों के लिए यह है कि गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन जो है वो अब डिजिटल होने वाला है। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर।

0: अच्छा सुनो, यू आर कमिंग फॉर तानिष्क्स रैले ट्रंक शो ना?
1: कब?
0: अरे आई टोल्ड यू लास्ट वीक, इट्स ऑन अक्टूबर 17th एंड 18th एट कोर्टयार्ड बाय मैरियट रैले कैरी, 1008 पार्क साइड मेन स्ट्रीट, कैरी नॉर्थ कैरोलाइना 27519, फ्रॉम 11 AM टू 7:30 PM. We had planned to get dinner also after.
1: Oh, I've already scheduled a flight meeting on the 17th.
0: Theek hai, Sunday then. What better way to spend the weekend than shopping for diamonds? Tanishq, a Tata.

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, और अब वक्त हो चुका है बॉलीवुड की खबरें आपको सुनाने का। तो हर साल की तरह इस बार भी 2 अक्टूबर को विजय सालगांवकर, दैट इज अजय देवगन, और उसकी फैमिली का राज देखने के लिए थिएटर्स में भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। जी हाँ, अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड सस्पेंशन थ्रिलर फिल्म दृश्यम 3 द कंक्लूजन कल रिलीज हो चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर आते ही इसने तहलका मचा दिया है। तहलका क्या क्या मचा दिया है, क्या क्या रिकॉर्ड बनाया है, दर्शकों को ये फिल्म कैसी लग रही है, सब कुछ बताऊंगा। यार थोड़ा सब्र कर लो, पहले सुनते हैं अच्छा ये गाना और उसके बाद विजय सालगांवकर और मतलब दृश्यम 3 के कैसे रिव्यू है, ये डेफिनेटली आपको बताना चाहूँगा। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का लोकल।

0: अच्छा सुनो, यू आर कमिंग फॉर तानिष्क रैले ट्रंक शो ना?
1: कब?
0: अरे आई टोल्ड यू लास्ट वीक, इट्स ऑन अक्टूबर 17th एंड 18th एट कोर्टयार्ड बाय मैरियट रैले कैरी, 1008 पार्क साइड मेन स्ट्रीट, कैरी नॉर्थ कैरोलाइना 27519, फ्रॉम 11 AM टू 7:30 PM. We had planned to get dinner also after.
1: Oh, I've already scheduled a flight meeting on the 17th.
0: Theek hai, Sunday then. What better way to spend the weekend than shopping for diamonds? Tanishq, a Tata product.

Well, enjoy kiya apne gana. Ab baat karte hain Drishyam, the conclusion, that is Drishyam 3 ki. To reports ki mane to film ne apne pehle hi din worldwide 95 crore rupay ki chappar faad कमाई कर डाली है। ये अजय देवगन के करियर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग बन गई है। लोग कह रहे हैं कि फिल्म का इंटरवल और क्लाइमेक्स इतने सारे ट्विस्ट और टर्न से भरा है जो आपके होश उड़ा देगा। इस बार तब्बू और अजय देवगन के साथ विलेन के रोल में जयदीप अलावत ने जो समा बांधा है उसे देखकर जनता थिएटर में ताली बजाने पर मजबूर हो गई है। टिकट बुकिंग तो यार पहली कर लीजिए क्योंकि इतनी भीड़ उमड़ने वाली है। यार दृश्यम सीरीज है इतनी ऐसी कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पर निर्माता नाइट से, एंजॉय करते हैं। अगला एक गाना बने रहेगा रेडियो नारा पर, पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा नाइट्स एंड बॉलीवुड की गलियारों से ये खबर आ रही है कि एक्टर आयुष्मान खुराना और सारा अली खान जो है वो उनकी आने वाली फिल्म उड़ता तीर की रिलीज डेट आगे बढ़ा रहे हैं। यह फिल्म पहले 9 अक्टूबर को आने वाली थी लेकिन बॉक्स ऑफिस पर भाई कहर मचा रही ना दृश्यम 3। अब दृश्यम 3 के साथ कम्पीट करना है तो आपको कंटेंट भी वैसा रखना पड़ेगा ना। तो ये देखते हुए उन्होंने समझदारी दिखाई और बैकआउट कर लिया। मुझे लगता है कि 9 अक्टूबर को आप अगर रिलीज़ कर रहे हो तो उससे अच्छा आप बाद में करते थे ना, कुछ महीनों के बाद, क्योंकि दृश्यम 3 की जो हवा है वो तो और चलने वाली ही है। तो बेहतर रहता और आप थोड़ी देर कुछ महीनों के बाद या अगले साल ही रिलीज़ करते थे। आप सुन रहे हैं रेडियो नारा, पर निर्मला नाइट्स, एंजॉय करते हैं अगला गाना रेडियो नारा, पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारापुर निर्वाणा नाइट्स और अभिषेक बच्चन का मजेदार बयान ऐश्वर्या और डैड को मनाओ। जी हाँ, अभिषेक बच्चन इस दिनों अपने मजेदार बयानों को लेकर काफी सुर्खियों में है। जब उनसे पूछा गया कि आइकॉनिक गाने का कजरारे का वर्जन 2.0 बनना चाहिए, तो जूनियर बच्चन ने यह कहा, हंसते हुए कहा, भाई मुझसे क्या पूछ रहे हो, पहले ऐश्वर्या और मेरे डैड को जाकर इसके लिए मनाओ। अब देखना ये है कि क्या ये तिकड़ी दोबारा नज़र आएगी और थिरकते हुए, क्योंकि कजरारे ये जो गाना था ये बहुत ही काफ़ी ब्यूटीफुल और कितने डिकड़ तक ये गाना चला था उस टाइम में, अभी भी ये गाना चल ही रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये 2.0 कजरारे आएगा और अलीशा चिनॉय ही ये गाना गाएगी? अगर ये गाते हैं और इसके बाद ये ट्रियो जो है अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन एक साथ आते हैं तो मजा ही आ जाएगा। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, रेडियो नायरा पर।

आपने एंजॉय किया ही गाना, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा बनीवाला नाइट्स एंड नुसरत भरूचा के साथ। बाली में हुआ बड़ा हादसा, जी हाँ, एक फिक्रमंद कर देने वाली खबर जो है वो सामने आ रही है। एक्ट्रेस नुसरत भरूचा, जो नुसरत इंडोनेशिया के बाली में वैकेशन मना रही थी, जहाँ उनका एक गंभीर स्वरूप से जो है वो हादसा हो गया है और उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई है। खबर है कि उनको मुंबई वापस लाया गया है और उसके बाद उनकी एक सर्जरी जो है वो होने वाली है। मतलब यार यू नो ऐसी चीज़ है। ठीक है, एंजॉय करते हैं अगला गाना, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर। रेडियो नायरा, पक्का देसी, पक्का लोकल। और हाँ,

रोशन और सबा आजाद के प्यार के 5 साल और एक रोमांटिक खबर। बॉलीवुड के ऋतिक रोशन और उनकी गर्लफ्रेंड सबा आजाद ने अपने प्यार के 5 साल पूरे कर लिए हैं और इस खास मौके पर ऋतिक रोशन ने सोशल मीडिया पर सबा के साथ बहुत अच्छी पिक्स शेयर की है, जिसे देखकर फैंस और बॉलीवुड जो अपना है प्यार किस तरह से लुटाते हैं ये समझ में आ रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि मेरी जादू शक्तियाँ वापस आ गई है। अब मैं पोरबीटा का नहीं, अब मैं काफ़ी मैं बड़ा हो गया हूँ। आप सुन रहे रेडियो नारा पंडित नाइट्स, रेडियो नारा पक्का देसी पक्का।

यार जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

कभी कभी ना ऐसा होता है कि यार बहुत चीजें हम करते रहते हैं, इतना बिजी रहते हैं और जब फुर्सत मिलती है तो फैमिली के साथ वक्त बिताते हैं, है ना, ऐसा होता है इन जनरल। लेकिन कभी कभी खुद से मिलना भी जरूरी है। आप क्या हो, आपको क्या करना है, किस तरह से करना है, ये सब जानने के लिए आपको अपने आप से मिलना बहुत जरूरी है। खुद से भी मिल लिया करो, वीकेंड मनाते हो ना, लाइक ब्रेक लेते हो, वीकेंड मनाते हो, किस चीज़ के लिए, रिफ्रेश लगने के लिए। तो कभी कभी खुद को भी रिफ्रेश करना चाहिए, अपनी पसंद का चॉकलेट खाना चाहिए, अपनी पसंद का खाना खाना चाहिए, खुद के लिए टाइम देना चाहिए, ड्राइव पे जाना चाहिए, तो ये चीज़ करनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है। खुद में जितना आप खुद से लाइक खुद को जितना अहमियत दोगे देनी पड़ेगी। आप सुन रहे हैं रेडियो डायरा, बता रहे हैं।

आप सुन रहे रेडियो नायरा पंडिरबना नाइट्स। आप हमारे रेडियो नायरा के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल प्ले स्टोर से। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली टाइप करना है रेडियो नायरा, आपको ऐप मिलेगा। ऐप मिलने के बाद आप एंजॉय कर सकते हैं हमारे आरजेस के एंटरटेनमेंट से भरपूर शो, एंजॉय कर सकते हैं अनलिमिटेड म्यूजिक एंड बस शर्त इतनी सी है कि आपका नेटवर्क जो है वो काफ़ी अच्छा रहना चाहिए एंड 7 से 10 का टाइम आप लोगों के साथ बातें करते करते कैसे बीत जाता है ये पता ही नहीं चलता। कल मिलूंगा आपको रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट से शो पर, मिटाऊंगा आपका स्ट्रेस, बनाऊंगा आपके मूड को रिफ्रेश। फिलहाल एंजॉय कीजिए, बहुत खूबसूरत शाम है। इस खूबसूरत शाम में अगर आपके साथ कोई खास है तो फिर क्या ही कहना है ना। तो वही यार, अभी एंजॉय करने का वक्त हो चुका है आपका और मैं मिलूंगा आपको कल। तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए, खुश रहिए एंड मिलते हैं कल। गुड नाइट, शब खैर।

नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

रेडियो सिटी पर सुनिए द हम्मा सॉन्ग, संग बाय जुबिन नौटियाल, शाशा तिरुपति, कंपोज बाय ए आर रहमान, रिक्रिएटेड बाय बादशाह एंड तनिष्क, एंड रिटन बाय महबूब।

0: जान जल्दी आ। क्या हुआ? अरे जल्दी आना,
1: ये देख, ये तेरा एक्स है ना, इसका नया वीडियो आया है।

0: वो देख वो क्या है?
1: पंछी है क्या?
0: ना रे पगले, प्लेन।
2: अरे देख अंडरवेयर बाहर है, सुपरमैन।
0: ना, दैट इज बाबाजी।
3: Listening to WCMC FM Holly Springs 99.9 FM HD4 W270 DT Durham 101.9 FM WDUR Durham 14

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

0: I'm sorry.
1: क्या क्या कहा आपने?
0: I'm sorry. मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया.
1: कोई बात नहीं सेनोरिटा, कोई बात नहीं. बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं.

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: हाय एवरीवन, दिस इज मोहित लालवानी. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गाना अच्छा लगा. सब्सक्राइब टू द चैनल, नीचे एक बेल आइकन बना हुआ है छोटा सा, उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी हमारी अगली वीडियोज हैं वो आपको मिलती रहेंगी. ऐसे प्यार करते रहिए. लॉट्स ऑफ लव.
1: रेडियो नायरा पर आप सुन रहे हैं गीतांजलि.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोक।

0: Naira 101.9 FM, Raleigh, Durham. Also available on 99.9 FM, HD4 and 1490 AM. Pakka Desi.
1: 99.9 Naira pe kho jao, Pakka Desi.
2: कृपया ध्यान दें, आपकी गीत बाजार की फ्लाइट अफरोज ताज और जान कॉलवेल के साथ तैयार है.
3: Every Sunday 10 to 12 noon, let's fly with Geet Bazaar.

साउथ एशिया रेडियो 10 to 12 नून एवरी संडे, संडे के संडे। You want music from all countries of South Asia? Listen to Geek.

0: जब तुम चले गए हो तो फसलें बहार क्या। अरे जब तुम चले गए हो तो फसलें बहार क्या, मौसम बदल गया तेरे किरदार की तरह। मैं समझता हूं कि मौसम भी इंसान के मिजाज की तरह बदलता रहता है। दूसरे अल्फाज में मैं कहूंगा कि अगर मौसम आपकी पसंद का है तो आपके मिजाज अच्छे हो जाते हैं, वरना इतने अच्छे नहीं रहते। अगर आपका महबूब, आपका चाहने वाला, आपका संगी साथी अगर आपके साथ है तो हर मौसम खूबसूरत है। हम आपके साथ हैं तो मौसम कितना हसीन है ये देखिए, और साथ साथ अगर आपकी फरमाइशें हमारे साथ हैं तो क्या बात है। वी आर योर होस्ट अफरोज़ जान कॉलवेल एंड रवि चिरिकुड़ी, 10 से 12 हम सुबह, 10 से 12 हम शाम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। दिस इज गीत बाजार रेडियो नायरा की पेशकश।
1: You are listening to Geet Bazaar on Radio Naira 101.9 FM with new double broadcasting power. Also 99.9 HD4 and 1490 AM Raleigh Durham.
2: And don't forget to download the Radio Naira app so you can listen to Geet Bazaar and all of Radio Naira's wonderful Desi programming easily and from anywhere on your phone and other devices. The Radio Naira app can be obtained from the App Store and the Google Play Store. So it's really easy. Just download it and start listening.
0: इस पेशकश में दूसरी पायदान पर जो फरमाइश आई है वो है मोहतरम जनाब चरणजीत लाल जी ने, मोहतरमा कंचन लाल जी, और हमेशा की तरह पहला नगमा हमारा ज़्यादातर ज्योति करीर साहिबा की फरमाइश पर होता है, जैसे अभी आपने इसको सुना। अब आप समाप्त फरमाएं, देखिए कि ये नगमा कितना प्यारा, कहाँ तक बचा के रखा है मोहतरम जनाब चरणजीत लाल जी ने, मोहतरमा कंचन लाल जी ने, एस डी बर्मन की बर्थडे के मौके पर जो अक्टूबर 1 को थी, एंड लता जीज बर्थडे वाओ सितंबर 28 को थी, और साथ साथ महात्मा गांधी की बर्थडे अक्टूबर 2 को थी, और मो हसन की बर्थडे अक्टूबर 2 को थी। तो ये हैं बर्थडे जिनके लिए ये नगमा पेश किया गया है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि होंठों पे छुपा रखी थी सदियों से एक बात, जरा देखें आप शेर, होंठों पे छुपा रखी थी सदियों से एक बात, घबरा के घुटन से मुझे मुंह खोलना पड़ा। यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार।

0: हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। अरे हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, और तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगु क्या है।
1: To everything I say, you say, what are you in reply? To everything I say, you say, what are you in reply? This style of conversation, tell me how you justify.
0: बेशक, और फिर आगे फरमाते हैं कि जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा। अरे जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जस्तजू क्या है।
1: The body's been cremated, so the heart too must have burned. The body's been cremated, so the heart too must have burned. When you sift through the ashes now, what seek you to descry?
0: Mirza Ghalib ka kalam Jagjit Singh ki mausiqi thi, aur awaazein Chitra Singh aur phir Vinod Sehgal ki awaaz bhi yahi par hi hai, isi mein maujood hai.
1: And of course, मुझे गजल बहुत पसंद है, खासतौर से जैसे गुलजार साहब ने उसको पिक्चराइज किया था 1988 वाले ड्रामे में जो मिर्जा गालिब के नाम से दूरदर्शन पर आया था। और आई रियली लाइक इट बिकॉज दिस पर्टिकुलर गजल शोज हाउ अ गजल ट्रेवल्स फ्रॉम द रॉयल मुशायरा प्रेसाइडेड ओवर बाय बादशाह जफर द लास्ट मुगल एंड देन proceeds to the street singers, the wandering fakirs who are singing in the streets, singing Ghalib's wonderful words, and then how from there it ends up being sung in the mudras of Delhi, where, according to legend, Ghalib had some of his greatest fans.
0: Mohtarma Farida Sheikh Sahiba ne farmaish bheji hai aur hamesha wo alert rehti hain kisi ki birthday ho aur foran humse share karti hain. महात्मा गांधी की बर्थडे अभी परसों थी या मोहतरमा फरीदा शेख साहब ने जो नगमा भेजा है गांधी जयंती के मौके पर, क्या बात है, कत्ल करके फाका कश बरह ना पा राहगीर को, कत्ल करके फाका कश बरह ना पा राहगीर को, देख लो हर नोट पर मकतूल की तस्वीर को।

0: लहरा के जब तू चलेगी लहराएगी नदी भी, लहरा के जब तू चलेगी लहराएगी नदी भी, और बिना फूल ये तेरे बाल देखकर खिलेंगे बाग भी। बहुत पुराना एक मेरी कविता थी, उसका ये मैंने हिस्सा लिया हुआ है। गुलजार का कलाम था, आर डी बर्मन की मौसीकी, मासूम वाज मेरी 1983, भूपेंद्र और सुरेश वाडकर की आवाज़ें थी। हुजूर इस बहुत अच्छा था ना वही है, लेकिन मैं आपका मज़ा नहीं ख़राब करना चाह रहा। मोहसिन साहब एंड सलमा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी हर फरमाइश सर आँखों पर।
1: And Afroz G, several listeners have recently asked if they can submit requests and how to submit requests to Geet Bazaar. So the best way to do it is to contact us on WhatsApp. The number is area code 919-999-8192. That's +1 if you're out of the country, 919-999-8192. That's the best on WhatsApp. And make sure when you submit a request to let us know your name and where you are calling from. And of course, this is Community Calendar, and we will be hosting at UNC Swami Mukundananda Ji, who is touring these days, and he'll be in Chapel Hill on Thursday, October 8th. The event begins at 6:30 p.m. There'll be dinner included, a box dinner, and discourses on stress management and coping with college life, just specifically for students. So we're looking forward to that. And the event with Swami Mukundananda Ji is going to be in Murphy Hall, the big lecture hall in Murphy Hall, right there on the ground floor. So see you there. One more announcement, and that is that Urdu Majlis is going to be happening next Friday, the 9th of October, and it'll start around 7 p.m. with some refreshments, and then go on to discussing the works of Sahir Ludhianvi. And then in the second half, Dusri Nashistme, you can recite your own poetry or your favorite poetry by some of the great poets, or your favorite poetry by somebody unknown who you want us to hear for the first time. So everyone's welcome, free to all. It's in the New West Building on the UNC campus, right on 175 East Cameron Avenue, New West 219 is the room number. See you there. And the NC Dashera Festival, the Ram Leela and the Ravan Dahan will all be taking place on October 24th, 2026. And that will be great. There are garam garam jalebiya and all kinds of snacks. And then the show, which features episodes from the story of the Ramayana, from Ramji's childhood all the way to the victory in Lanka. You can catch it all at HSNC 309 Aviation Parkway in Morrisville, North Carolina. The Mela starts at 4 p.m., the Ram Leela starts at 5:30 p.m., and the Ravan Dahan will be approximately 8:30 p.m. So come on down and check it out. For more information, you can contact Saroj Sharmaji at 919-656-5224 or Sushma Maheshwari Ji at 919-880-8529.
0: मोहतरमा पूर्णिमा गुप्ता साहिबा की परीक्षा हमारे लिए आई है, इसमें भी उन्होंने बिल्कुल उसी तरह से एक हिस्सा कोई अपनी आवाज़ में गाया है और हमसे कहा है कि हम पहचाने ये कौन सी फिल्म का है, बल्कि सुनवाएं ये कौन सी फिल्म का है। तो पहले तो आप ज़रा अपनी आवाज़ हमें सुना दें कि कौन सा नगमा आप चाहती हैं।
2: सारे भेद खुल जाते।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक दफ़ा और सुनाएं।
2: सारे भेद खुल जाते
0: जनाब। ठीक है, तो पूर्णिमा जी मैं समझता हूँ इतना मुश्किल नहीं था। वैसे हो सकता है जान भाई के लिए मुश्किल रहा हो, लेकिन हम तो सब जानते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। खैर, मगर देखिए ऐसा है कि मैं एक शेर सुनाता हूँ और उसे देखें कि क्या उस आपके ख्याल से मिलता है वो जो आप सोच रही थी। नजर मुझसे इतनी चुराता है क्या, अरे नजर मुझसे इतनी चुराता है क्या, चुराने का दिल अब इरादा है क्या,

हसरत जयपुरी का कलाम, शंकर जयकिशन की मौसीकी, 1962 की ये फिल्म थी दिल तेरा दीवाना है सनम, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। मोहतरमा पूर्णिमा गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी हर परीक्षा सराखों पर चैलेंज के साथ। मोहतरम जनाब चंजीत लाल जी, मोहतरमा कंचन लाल जी ने एस डी बर्मन एंड लता जी की बर्थडे के मौके पर एक और नगमा हमें याद दिलाया, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, क्या बात है। जो हम पर तुम्हारी निगाहें जमी हैं, जरा समाप्त फरमाए साहब, जो हम पर तुम्हारी निगाहें जमी हैं, यही तो है ठंडी हवाओं की खूबी।

सुना जब भी ठंडी हवा का ये नगमा, अरे सुना जब भी ठंडी हवा का ये नगमा, तुम्हारी कसम तुम बहुत याद आए। शकील बदायूनी का कलाम, रवि की मौसिकी, ऑफ कोर्स दो बदन 1966 की ये फिल्म थी। आशा भोसले की सुरीली आवाज के साथ दिल को छूना वाला नगमा, मोहतरमा सीमा फारूकी साहिबा ने ड्रम से इसकी फरमाइश भेजी है। खातिनो हजरात, बाबू जुनेजा रेनो निवेडा से फरमाइश भेज रहे हैं। अरे वाह, रेनो निवेडा की बहुत जमाने के बाद फरमाइश आई है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब बाबू जुनेजा। मेहदी हसन की आवाज के साथ मुझ गमजदा को और भी वो गम सुना गए। देखें मुझ गमजदा को और भी वो गम सुना गए, पानी भरे गिलास को पानी पिला गए।

0: दिल में खिले हैं गुंचे, इस शेर को समाप्त फरमाइए। देखिए कितना अच्छा लगेगा अगर आप इसको सुनेंगे, हालांकि मैंने बहुत कोशिश की है आसान जुबान में लिखने की। दिल में खिले हैं गुंचे पहले जो साए थे, अरे दिल में खिले हैं गुंचे पहले जो साए थे, जो बीज की तरह से दिल में दबाए थे। मुनीर नियाजी का कलाम, हसन लतीफ़ की मौसीकी और मैं कह रहा था फिल्म का नाम तेरे शहर में। मोहतरमा फरीदा शेख साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, क्या बात है, ये नगमा आपने जगा दिया। एंड इसका ओकेजन है मोहतरम जनाब महमूद साहब की बर्थडे के मौके पर जो सितंबर 30 को मनाई गई। और मैं कहूँगा कि बुलबुल के गुलिस्तान में जो ये राग पड़े हैं, अरे बुलबुल के गुलिस्तान में जो ये राग पड़े हैं, मौसम के जागने से सभी जाग पड़े हैं। यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार।
1: सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

0: मौसम जो जाग जाए तो ये रक्स भी जागे, मौसम जो जाग जाए तो ये रक्स भी जागे, बिस्मिल के हंसी रक्स का हर नक्स भी जागे। हसरत जयपुरी का कलाम, आड़ी बर्मन की मौसीकी, भूत बंगला फिल्म का नाम, 1965 में ये भूत बंगला बनी। मन्ना डे की आवाज के साथ, वी आर योर होस्ट अफरोज़ताज जान कॉर्वेल एंड रवि चिरुकुड़ी।
1: यू आर लिसनिंग टू WCMC FM हॉली स्प्रिंग्स, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490

0: Naira 101.9 FM, Raleigh, Durham. Also available on 99.9 FM, HD4 and 1490 AM. Pakka Desi.
1: 99.9, Naira mein kho jao, Pakka Desi.
2: Bazaar every Sunday, 10 to 12 noon. Carry to Karachi, Raleigh to Rajasthan, Mumbai to Mombasa, Naples to Nepal, Missouri to Missouri, Niagara to Agra, Alabama to Allahabad, La Jolla to Lahore, Nevada to Noida, Carolina to Kerala, Chicago to Shikarpur, Louisiana to Louisiana, Oregon to Aurangabad, Tashkent to Kasgan, Utah to Eta, Texas to Texla, Virginia to Varanasi, Morrisville to Mauritius, Delaware to Delhi, Oklahoma to Okla, Dublin to Dubai, Baltimore to Butler House, Jarzak to Sharjah, Florida to Murodabad.
3: तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, बहुत से लोगों ने इसे नहीं सुना होगा शायद। तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, रास्ते में तुम्हें कोई भी दुश्मन ना मिलेगा। दिस इज गीत बाजार रेडियो नायरा की पेशकश। वी आर योर होस्ट अफरोज ताज जान कॉलवेल एंड रवि चिरकुड़ी, और साथ में ये भी कहता चलूं 10 से 12 सुबह 10 से 12 शाम हम आपकी खिदमत में मौजूद होते हैं इतवार के दिन।
4: यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार ऑन रेडियो नायरा 101.9 एफएम विद न्यू डबल ब्रॉडकास्टिंग पावर, आल्सो 99.9 एचडी4 एंड 1490 एएम राली डरम।
5: And don't forget to download the Radio Naira app so you can listen to Geet Bazaar and all of Radio Naira's wonderful Desi programming easily and from anywhere on your phone and other devices. The Radio Naira app can be obtained from the App Store and the Google Play Store. So it's really easy. Just download it and start listening.
3: Khatino Hazrat, jahan chupane ki baat hoti hai, वहाँ शायरी की बात होती है, और जहाँ शायरी की बात होती है वहाँ मोहब्बत की बात होती है ना। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप किसी बात को छुपाएं, बल्कि जो राज आप छुपाएं तब उसका और मज़ा है, और राज खोल दें उसका अपनी जगह मज़ा है। लेकिन बस यही है कि मोहब्बत करने में वो मज़ा नहीं जो मोहब्बत छुपाने में है। आप देखें कितनी बातें कही गई हैं शायरी में, बॉलीवुड में और लॉलीवुड में इतना कहा गया है छुपाना बताना बताना छुपाना। देखते हैं कि कैसे कैसे मज़ेदार जो अनुरोध आए हैं, जो फरमाइशें आई हैं। देखिए जैसे कि ये पहली फरमाइश राजकुमार सिन्हा की मेरठ से, यानी सरधना से, तो वो आप समाप्त फरमाएं। मुँह छुपा के तो सभी लोग जिया करते हैं, सच बात है कि मुंह छुपा के तो सभी लोग जिया करते हैं, और मुंह दिखा के जीना कोई आसान नहीं। यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार।

छुपा छुपा के न रखो जहां की नजरों से। आपको मजा आएगा शेर में, और जान भाई आप भी सुने कि छुपा छुपा के न रखो जहां की नजरों से। ये हुस्न है अजी, चोरी की कोई चीज नहीं।

छुप छुप के जा रहे थे, जाना था बता देते। अरे छुप छुप के जा रहे थे, जाना था बता देते, लेकिन कहाँ छुपोगे इसका तो पता देते।

ये कौन घुंघरू झमका, ये कौन चांद चमका, ये धरती पे आसमान आ गया पूनम का।

0: चांद नहीं देखना, सूरत मेरी परी की। समातरमाएं कि ए चांद नहीं देखना, ए चांद नहीं देखना, सूरत मेरी परी की, करना न फिर शिकायत एहसास से कम तरीकी।
1: यू आर लिसनिंग टू गीत बजा।

आंख मिचोली चंदा खेले, खेले बस बादल के संग। अरे आंख मिचोली चंदा खेले और खेले बस बादल के संग। मेरे संग वो नहीं खेलता, क्यों खेले पागल के संग।

धोबी नदी किनारे पर कपड़े दाग छुड़ाए। अरे धोबी नदी किनारे पर कपड़े दाग छुड़ाए, और मेरी आत्मा दाग छुड़ाए, जो मांगे सुपाए।

0: दाग
1: बचा के सबकी आंखों से ये क्या तुम लेके आए हो। समा थर्माए के बचा के सबकी आंखों से ये क्या तुम लेके आए हो, बता देते पता लगता कि अपने या पर आए हो।

दिल ले गया, जान ले गया, अरमान ले गया। हाय हाय, दिल ले गया, जान ले गया, अरमान ले गया, बर्बादियों का सारा सामान ले गया। यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार।

मेरे जज्बात का तूफान न पूछो हमसे, मेरे जज्बात का तूफान न पूछो हमसे, बड़े मजबूत सफीने को चलाना होगा।

दिल में तूफान उठाओ तुम्हें इजाजत है। अरे दिल में तूफान उठाओ तुम्हें इजाजत है, मगर फिर खुद को छुपाना मुझे बर्दाश्त नहीं।

0: ऐसी खेली आंख मिचोली अपनी माँ से बचपन में, अरे ऐसी खेली आंख मिचोली अपनी माँ से बचपन में, अब तक उसको ढूंढ रहा हूँ कहाँ छुपी जो आई ना।
1: You are listening to Geet Bazaar.

दीपक छुपा के रखना दिल में नहीं तुम अपने। अरे दीपक छुपा के रखना दिल में नहीं तुम अपने, ऐसा ना हो कि जलकर तेरा दिल कोई जला दे।

दुनिया को चलाता है, छुप छुप के जलाता है। समाप्त फरमाइए, अच्छा लगेगा शेर आपको। वैसे ये कि दुनिया को चलाता है और छुप छुप के जलाता है, चेहरा वो छुपाता है, ऐसा भी क्या नाता है। छुपने

पर्दा जो रुखे ताबा से उठे, दीवानों में हलचल मच जाए। समझ फरमाएं कितना जोशीला शेर लिखा, पर्दा जो रुखे ताबा से उठे, दीवानों में हलचल मच जाए, और एक शम्मा हो रोशन और जैसे परवानों में हलचल मच जाए। कोई इसमें शक नहीं, और जब शमा बुझ जाती है तब भी परवानों में हलचल हो जाती है, जलने के अलावा भी हलचल मच जाती है वक्त के साथ साथ। जैसे अब महफिल के ख़त्म होने का वक्त आ गया है और दिल में हलचल मची हुई है, 2 घंटे 2 मिनट में गुजर गए चलते चलते। मोहतरम जनाब दामोदर पांडे साहब की रामनगर बनारस से जो फरमाइश आई है सुनवाते जाएं। We are your host, Afrosta, John Caldwell and Ravi Chiriukri. 10 से 12 सुबह 10 से 12 शाम हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। This is Geek Bazaar Radio Naira की पेशकश। अगले हफ्ते मिलेंगे। ये सच कहता हूँ कि मुश्किल हो जाता है इंतज़ार करना आपकी मोहब्बत में। अगले हफ्ते तक इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा, लेकिन लोग कहते हैं ये शायरों की बातें हैं, वैसे हकीकत भी है, लेकिन शायरों की बातें कुछ इस तरह से हैं। अब जरा मेरा शेर गौर फरमाएं तो पता लगेगा कि परहेज नहीं करता मैं सच को बताने से। समझिए कि मजा आएगा और अगले गाने से कैसा आप जोड़ेंगे इसको। परहेज नहीं करता मैं सच को बताने से, क्या रात भी हुई है काजल के लगाने से। मोहब्बत जिंदाबाद।

हरमीत, तुझे देख के पता है क्या लगता था? कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा। कितना पोटेंशियल है तुझ में। क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू? What happened?

0: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
1: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
0: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
1: सच्चा आदमी, तुझे नहीं पता क्या?

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन चाहिए टिकटे, चाहे होने देना शौक को, ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो, घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: Kota 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi. 99.9
1: गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स और मैं हूँ सबके दिलों का चिराग. मेरा नाम है आज पराग. 7 से 10 में रहता हूँ आपके साथ, मिटाता हूँ आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूँ आपके मूड को रिफ्रेश. वेल, कैसे चल रही थी एंड कैसे चल रही है आज की आपकी शाम? आज की आपकी शाम तो काफ़ी अच्छी हो सकती है क्योंकि मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा है. और कल क्या किया? सत्संग गए, पाव भाजी खाया. क्या क्या किया? कल था 2 अक्टूबर, विजय सालगांवकर की दृश्यम द कंक्लूजन भी जो है वो रिलीज हो चुके हैं. बात करेंगे उसके बारे में भी. फिलहाल इस खूबसूरत शाम का ये पहला गाना प्ले करने जा रहा हूँ बस आपके लिए. अरे एक बात पूछना तो मैं आपसे भूल ही गया, कैसे हो आप? खुश तो हो ना? खुश रहिए क्योंकि अच्छा होता है. सुनाने जा रहा हूँ आपको अगला गाना, सुनते रहिएगा रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल.

एंजॉय किया आपने, गाना गाना था वाकई में काफी बेहतरीन। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, और अब वक्त हो चुका है कि मैं कुछ लोकल खबरें आपके साथ शेयर करूं। तो पहली खबर जो है वो काफी खुश कर देने वाली है। हमारे प्यारे शहर धरम और रैली ने पूरे अमेरिका में एक बार फिर हमारा नाम जो है वह चमकाया है। एक नई नेशनल रिपोर्ट के मुताबिक नया बिजनेस या नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए पूरे देश के टॉप 10 शहरों में हमारे दो शहरों को चुना गया है। एंड इस लिस्ट में धरम जो है वो 6th और रैली जो है वो 7th नंबर पर आया है। वो लाइक कहते हैं ना कि यार जो रैली धरम में रहता है वो कहीं और रह नहीं सकता, इसी प्रकार की ये चीज़ है। और एक बार फिर से ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए रैली एंड धरम के लिए। बहुत ही खुशखबर के साथ आज की शाम की शुरुआत हुई है। बने रहिएगा रेडियो नायरा पर।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पर निर्वाणा नाइट्स एंड अगली खबर ये है कि रैलीधरम एयरपोर्ट को भविष्य की जरूरतों के लिए बड़ा रूप दिया जा रहा है। क्या बात है, प्रशासन ने बताया कि 1.1 बिलियन डॉलर की लागत वाले इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत, दैट इज ट्रांसफॉर्म आरडीयू प्रोजेक्ट का नाम है, प्राथमिक रनवे दैट इज 5L23R को तैयार करने के लिए लगभग 50 लाख क्यूबिक यार्ड मिट्टी को हटाने और जो है वो समतल करने का काम तेजी से चल रहा है। एंड नया रनवे दैट इज 10,639 फीट लंबा होगा, जिससे इंटरनेशनल और जो दूरियां है वो तय करने में एंड जो उड़ाने हैं वो भरने में आसानी हो जाएंगी। ये नया रनवे पुराना रनवे से 537 फीट उत्तर पश्चिम में बनाया जा रहा है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स। फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा, एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉन वेज स्टार्टर्स पेयर्ड परफेक्टली विद ओवन फ्रेश चूर चूर नान मेड विद लव एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स। प्लानिंग योर बर्थडे, वेडिंग, ग्रेजुएशन पार्टी, कॉर्पोरेट गैदरिंग और फैमिली सेलिब्रेशन? Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love. And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration. Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
2: अच्छा सुनो, यू आर कमिंग फॉर तानिष्क्स रैले ट्रंक शो ना?
3: कब?
2: अरे आई टोल्ड यू लास्ट वीक, इट्स ऑन अक्टूबर 17th एंड 18th एट कोर्टयार्ड बाय मैरियट रैले कैरी, 1008 पार्क साइड मेन स्ट्रीट, कैरी, नॉर्थ कैरोलिना 27519, फ्रॉम 11 AM टू 7:30 PM. We had planned to get dinner also after.
3: Oh, I've already scheduled a flight meeting on the 17th.
2: ठीक है, संडे देन. What better way to spend the weekend than shopping for diamonds? Tanishq, a Tata product.

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पंडिरवाना नाइट्स। एंजॉय किया आपने, ये गाना गाना था वाकई में काफी बेहतरीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल क्या है। गर्मी से आजादी और वीकेंड हुआ सुहाना। जी हाँ, तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं उस मौसम की जिसने पिछले दो दिनों से हमें पसीने पसीने कर रखा था। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद आज मौसम का मिजाज जो है वो बदल गया है। ठंडी हवाओं के साथ तापमान जो है वो बेहद सुहाना हो गया है और हल्की बारिश के आसार भी है। यानी आज शाम को बाहर घूमने का प्लान अगर आप कर रहे हो वो परफेक्ट है। अब आपके साथ कोई आए या ना आए, मौसम का तो सुहाना साथ आपके साथ आने वाला ही है। बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल। एंजॉय करते हैं अगला एक गाना।

आपने गाना गाना था, वाकई में काफी बेहतरीन, जिसने इस शाम की खूबसूरती बरकरार रखी है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पंडिरवाना नाइट्स, एंड अगर आप आज घर बैठे बोर हो रहे हैं तो तुरंत डाउनटाउन रैली का रुख कीजिए। वहां इस समय रैली वाइड ओपन म्यूजिक की धूम मची हुई है, पूरा शहर म्यूजिक, बेहतरीन फूड ट्रक्स और आर्ट, जो आर्ट की शॉप्स लगी है वहां से गुजर रहा है। और सबसे अच्छी बात, ये जो त्यौहार है पूरी तरह से फ्री फ्री फ्री है, यानी यहाँ कोई टिकट नहीं चाहिए, बस अपने फ्रेंड्स को उठाइए और वहाँ पहुँच जाइए, मज़ा आता है। मतलब म्यूज़िक के साथ फूड, ये क्या कॉम्बिनेशन है, म्यूज़िक प्लस फूड इज इक्वल टू एन्जॉय, एन्जॉय एंड ओनली एन्जॉय। बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, सुनाने जा रहा हूँ आपको अगला गाना रेडियो नायरा, वक्का देसी वक्का लोकल।